0: Kabayan on Manawatu People's Radio, Thursdays at 6 p.m.
1: Hi everyone, I'm Ellen.
2: I'm Sasha.
3: And I'm Chris, and we're proud to bring you Slanza Sessions.
1: Slanza Sessions will be a place where school librarians can connect with their peers, listen to thoughts, ideas, plans and projects, all focused on creating awareness of the incredibly important role the school library and librarians play in the increasingly important literacy landscape.
2: We'll have interviews, reviews and more.
3: Join us for Slanza Sessions every Wednesday morning at 10:30 on Manawatu People's Radio, or find us online at npr.nz/show/Slanza Sessions, or on Spotify, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts.
4: We are
5: evangelical,
6: Buddhist,
7: Druid,
8: Catholic,
9: pagan,
10: Zoroastrian,
11: atheist,
12: Jewish,
13: Baha'i,
14: Mormon.
13: Bringing you faith and spirituality from around the world. Heart and Soul examines belief and how it forms communities.
15: Witch,
16: Sikh,
17: Muslim,
18: Rastafari,
19: Sami,
20: Hindu,
21: spiritual,
22: Christian,
23: Quaker,
24: Jedi Knight,
25: Paris.
26: They also call me War Beauty.
13: What do you believe? Heart and Soul from the BBC.
0: The BBC World Service. Midnight till 8 a.m. every day on NPR.
27: Namaste, main hoon Nirmala Nand aur aapka swagat karti hoon apne show Parichay mein. Parichay ka laksh yahi hai ki hum vishayon par bhi baatcheet karenge aur show ko lajawab geet sangeet se bhi sajayenge.
1: नमस्कार आदाब सत श्री अकाल गुड आफ्टरनून. मैं हूं आपका दोस्त मैक्स चोपड़ा और आज मैं लेके आया हूं आप सभी के सामने ये एक शो जिसका नाम है आपका अपना सुरों का सफर. तो आज कुछ हम अलग दिग्गज संगीतकार जिनका नाम है नुसरत फतेह अली खान, आज हम इनके गाने सुनेंगे. साथ साथ में हम सुनेंगे आरजे कार्तिक की एक मोटिवेशनल स्टोरी जो कि हम उम्मीद जानने को मिलेगा मशहूर गीतकार नुसरत फतेह अली खान के बारे में. नुसरत फतेह अली खान अपने संगीत के लिए पास्ट में नहीं आज की डेट में भी इनके गाने बहुत ही सुने जाते हैं. तो इनका जन्म में हुआ पाकिस्तान में और इनका देहांत हुआ 16 अगस्त 1997 में. ये सिर्फ एक सिंगर ही नहीं, इसके साथ साथ और म्यूजिक डायरेक्टर भी रहे, लेकिन ये ज्यादा मशहूर हुए अपनी कवाली के लिए जो सूफी डिवोशनल म्यूजिक है. फ्रॉम पान पे इनका नाम दर्ज किया गया है. इनको बहुत ही रिकॉग्निशन मिली एज ए शाने कवाली और इनको किंग ऑफ कवाली भी कहा जाता है. और आज ये लगभग पूरे विश्व में ही लोग इनको जानते हैं और इनका संगीत सुनते हैं. अगर इनकी लोकप्रियता की बात करें तो इनको 50 वॉइसेस ग्रेट वॉइसेस एनपीआर ने इनको घोषणा की थी. एनपीआर एक है नेशनल पब्लिक रेडियो, ये एक अमेरिकन ब्रॉडकास्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है वॉशिंगटन में, और 200 ग्रेटेस्ट सिंगर्स ऑफ ऑल टाइम का दर्जा इन्हें दिया गया. अमेरिकन मैगजीन रोलिंग स्टोन 2008 किया और घोषणा की कि ही इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कवाली सिंगर ऑफ हिज जेनरेशन. तो काफ़ी लोकप्रियता मिली इनको. इनका जन्म वेस्ट पंजाब में हुआ जो कि पाकिस्तान में है, और सिर्फ 15 साल की उम्र से ही इन्होंने अपने पिताजी के साथ पब्लिक परफॉर्मेंसेस देशों में इन्होंने अपने टूर किए और लोगों को बहुत मनोरंजन दिया. तो चलिए अब और देर नहीं करते हैं, सुनते हैं हम इनका एक पहला संगीत. इन्होंने बहुत ही संगीत गाए लेकिन कुछ संगीत बहुत ही ज़्यादा फेमस हुए जो आज भी हम सुन सकते हैं काफ़ी फिल्मों में, आज भी वो रीमिक्स बन के या कोई नए सिंगर की आवाज़ में बन के आ रहे हैं. तो ये है नुसरत फतेह अली खान की आवाज़.

क्या बात है, क्या खूब संगीत था। देखो जो लोग तो कव्वाली पसंद करते हैं वो तो आज मुझसे बहुत खुश होंगे, लेकिन जो कव्वाली है वो हर कोई पसंद नहीं भी करता। तो अगर आपको ये अच्छा नहीं लग रहा है तो माफ़ कीजिएगा, अगले सुरों के सफ़र में हम आपके लिए एक और ऐसे ही स्टोरी लेके आ रहे हैं एक और सिंगर के बारे में, तो जुड़े रहिएगा। तो बात करते हैं जी नुसरत फ़तेह अली खान जी की। इनका जन्म जो हुआ वो हुआ पंजाबी मुस्लिम फैमिली में इन लायलपुर 1948 में। तो इनके जो फैमिली थी वो पहले बंटवारे से पहले जलंधर में रहती थी जो कि अब इंडिया में है। तो इनके पिताजी का नाम था फतेह अली खान और फतेह अली खान जी चाहते थे कि ये एक डॉक्टर बने, लेकिन अर्ली जब इनका करियर चल रहा था तब ये एक शौकिया तौर पे तबला पार्टी इन्होंने ज्वाइन की थी। तो तबला पार्टी जिनका नाम था वो थे उस्ताद मुनव्वर अली खान, वो एक लेजेंडरी क्लासिकल वोकलिस्ट उस्ताद बड़े गुलाम अली खान के बच्चे थे। तो उन्होंने जब पाकिस्तान से इंडिया परफॉर्म करने के लिए फर्स्ट टाइम विजिट किया तो नुसरत फ़तेह अली खान जी ने उनको एज अ तबला आर्टिस्ट ज्वाइन किया था। तो उन्होंने इतना बढ़िया तबला बजाया उस टूर पे कि जो मुनव्वर अली खान थे उन्होंने उनको बहुत बहुत बधाई दी और उनके पिताजी से बोला कि अब तो ये हमारे साथ में ही रहेंगे और इनको सिंगर भी बनाना चाहिए। और फिर उनके पिताजी ने वो उस बात को मानते हुए अपना जो उनका एक सोच थी कि मेरा बच्चा बड़ा होकर डॉक्टर बने उसको बदल दिया। तो देखिए कुछ भी हो सकता है, उनके पिताजी सोच रहे थे डॉक्टर बनेंगे लेकिन उन्होंने एक ऐसा मुकाम हासिल किया अपनी कव्वाली और सिंगिंग में कि आज पूरी दुनिया नुसरत फ़तेह अली खान जी को जानते हैं। तो इसी के साथ साथ एक और संगीत सुनते हैं, छोटा सा उसकी कुछ लाइनें सुनते हैं जिसका नाम है मेरे रश के कमर।

बहुत खूब, उम्मीद करता हूँ ये संगीत भी आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। नुसरत फतेह अली खान जी ने बहुत ही बॉलीवुड म्यूजिक मूवीज़ में भी गाना दिया, उन जैसे कि कच्चे धागे, धड़कन, गुरु, बहुत संगीत इनके फेमस हुए और बॉलीवुड में भी उन्होंने अपनी एक छाप छोड़ी। तो चलिए एक और संगीत सुनते हैं इनकी आवाज़ में, जिसका नाम है आफरी आफरी।

0: उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये संगीत भी बहुत पसंद आया होगा। देखिए गाने बहुत हैं और म्यूजिक बहुत ज़्यादा, इन्होंने परफॉर्मेंस चैलेंज हमेशा बना रहेगा, लेकिन आप इनके गाने सब ऑनलाइन अवेलेबल हैं, यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, अलग अलग म्यूजिक ऐप्स पे अवेलेबल हैं, तो आप ज़रूर सुनिए अगर आपने नहीं सुने, लेकिन मैं पूरा विश्वास रखता हूँ कि आप सबने सुना ही होंगे। तो हमने आपसे वादा किया था कि हम आरजे कार्तिक की एक मोटिवेशनल स्टोरी भी लेके आएंगे आपके लिए, तो अभी समय है छोटी सी एक स्टोरी।
1: किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि कोई भी व्यक्ति हमारे पास तीन कारणों से आता है, भाव से, अभाव से या प्रभाव से। ये और प्रभाव में आया है तो प्रसन्न हो जाइए कि परमात्मा ने आपको इतनी शक्ति

0: तो शरबत की स्टॉल भी नहीं लगी हुई है, दुकान के बाहर भी ज्यादा भीड़ नहीं है, सड़क भी खाली खाली सी है। भिखारी इस उम्मीद से कि बड़े सज्जन सेठ जी हैं, पिछली बार तो शरबत पहुंचता है वो भिखारी वहां पर सेठ जी की दुकान के आगे, जाकर कहता है बाबू साहब एक गिलास पानी पिला देंगे। सेठ जी को कहते हैं अरे ये लो एक रुपए का सिक्का, और कहते हैं चलो आगे, बड़ी दूर से आ रहा हूँ, प्यास लग रही है, अभी एक रुपए का सिक्का दे देना, चलो आगे चलो, अभी पिला दो, 50 काम कर दो, चलो चलो चलो। भिखारी ने कहा ठीक है बाबू साहब, उम्मीद से आया था, कोई बात नहीं, जा रहा हूँ आगे, लेकिन बस ये बताना चाह रहा था कि एक महीने पहले यहीं से निकला था, थी ना, तो आप सबको रोक रोक करके शरबत पिला रहे थे, मुझे भी रोक करके आपने शरबत पिलाई, और सेठ जी उस दिन तो आपने मुझे 2 गिलास शरबत पिलाए थे, एक महीने में ऐसा क्या बदल गया कि आज आप मुझे पानी, आपकी मर्जी। ये बोल करके वो भिखारी जाने लगा, सेठ जी अपनी गद्दी से उतर करके आया और अरे लो लो लो लो ठंडा जो है पानी एक गिलास लेकर के आ गया, पियो गर्मी का समय है, पियो पानी। भिखारी ने पानी पीने के बाद कहा कि सेठ जी बुरा मत मानिएगा, लेकिन ये एक दिन का पुण्य मत कमाइए, मानवता जो है आपके अंदर है उस मानवता को बाहर लेकर आइए, अपने बच्चों को भी सिखाइए, उनको संस्कार दीजिए, आचरण में लेके आइए, चलता हूं बाबू साहब। ये बोलकर के वो भिखारी तो चला गया, लेकिन सेठ जी सोचते रहे कि एक दिन का पुण्य क्यों कमाना, अगर आपको बदलना ही है स्वयं को तो एक दिन के लिए
1: सीखने को मिलता है कि सिंपल सी कहानी है जिसका अर्थ है कि अगर आपको बदलना है में कोशिश करते रहें और अपने आसपास सुधार करते रहें, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने भी यही सीखा होगा और आगे आप किसी को भी यही सिखाएं। पिता हूं आप एक दूसरे को सिखाते रहिए, मोटिवेट करते रहिए, और ऐसे ही हम सब एक साथ मिलके आगे बढ़ते रहें। और अब सुनते हैं आखिरी संगीत नुसरत फतेह अली खान जी का, जिसका नाम है, बहुत ही फेमस सॉन्ग है ये, जिसका नाम है तुम्हें दिल लगी भूल जा।

0: उम्मीद करता हूं कि ये संगीत आपको बहुत पसंद आया होगा और आज का शो बहुत पसंद आया होगा आप सभी को। तो चलिए मिलते हैं अगले सप्ताह एक बार फिर से सुरों के सफर में नए संगीतकार के साथ और नई कहानियों के साथ। धन्यवाद
1: सुनने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इस शो परिचय में आना चाहते हैं तो मुझे 021-626-542 पर पहुंच सकते हैं। आप हमें किसी भी समय कॉल कर सकते हैं इस नंबर पर। आप परिचय को हर थर्सडे 5:30 PM से सुन सकते हैं।
2: You're listening to NPR, Manawatu People's Radio. Te reo irirangi o ngā tangata o Manawatu. It's 8 o'clock. Community notices on NPR.
3: Tomona Park Orchard Trust have a vacancy coming up for a trustee. The group exists to encourage community involvement in fruit tree growing for the benefit and enjoyment of residents and visitors. Sustainable, healthy eating, relief of poverty by making fresh fruit and nuts available, and protection of native flora and fauna in the park. If you're interested, get in touch at TomonaParkOrchardTrust@gmail.com.
2: Community notices are a free service that anyone can use. Fill out the online form at npr.nz or call 06 357 9340.
4: Hello there, how are you? My name is Kevin Riley and I do Irish Time, where it's mostly news and views about what's going on in Ireland, both north and south of the border.
2: Irish Time on Manawatu People's Radio. Wednesdays at 6 PM, Saturdays at 7 PM.
5: Catch up with the Bridge Zone crew.
6: Listen to the banter on bidding,